0: रेडियो सुनो 91.7 FM
1: कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
0: एवर्कम हृदयम निरंजा ओणाशंसकल
2: ओणाशंसकल

0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम कतार्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
1: एवरकुम हृदय निरंजन ओणाशंसकल

0: रेडियो सुनो 91.7 FM
1: कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
0: एवर्कम हृदयम निरंजन ओणाशंसकल।

0: रेडियो सुनो 91.7 FM
1: कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
0: एवरकम हृदयम निरंजन ओणाशंसगल

0: रेडियो सुनो 91.7 FM Qatar's favorite radio station.
1: एवरकुम हृदयम निरंजन ओणासंसगल

0: Radio Suno 91.7 FM Qatar's favorite radio station.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।